0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: 100 FM.
0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
4: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीक

0: to the bank. Easy wala bank.
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदे और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: Your location for maximum music.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: This program is brought to you by
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.

0: Easy वाला बैंक।
1: Easy पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। Easy पैसा डिजिटल बैंक। Easy वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 AllNet Minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.

0: Diddle Bank, Easy Wala Bank.
1: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
4: This program is brought to you by
5: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
4: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by Femex Laga Aur Bhul Ja,
1: Femex Laga Aur Bhul Ja.
0: And
2: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: And
3: Sarsab Nitro Force ko laga aur jeet taja.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
5: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
9: टाइम से ऐसे कि मैं हूँ कब्र चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
12: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
13: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
12: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
14: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
13: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या?
12: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
14: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
13: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
14: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
12: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
12: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memory. Milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.

0: फेडरल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: तमाम चीजों पर समझौता क्यों करें। शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: वीकली लकी ड्रॉ विनर सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: अभी

0: इजी वाला बैंक।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
4: at shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
6: This program is brought to you by
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And
8: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
6: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: खालिस अज्जा भरोसे मन शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
3: facebook.com/fm247365
4: FM247365। बैन सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: facebook.com/fm247365.
1: FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Digital Bank, easy wala bank.
1: Majiga Haftima Lucky Draw Winner, Sial Kotwa, Rohila Kashif, EV Bike Katevarti, and Tamabe, Har Hafte, Car, EV Bike, Sona Jasika, and Bishmari Nam Katisangota. Bas Majiga Shampoo Ji, Botal K, Scratch Karo, and Dair Sara Inam Katyo. Try all new Majiga Shampoo, nourishes hair naturally.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees only.
2: And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द Jazz Cash app now.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राबता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: FM 100, like us on Facebook.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

यस एवरीबॉडी, तो भाई कब हंसे थे आप आखिरी बार खुलकर, जब आप बेफिक्र होकर हंसे थे और कह के मार कर हंसे थे। तो ये आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि जी आप किसकी वजह से, किसके साथ में बहुत ज्यादा हंसे थे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपको ना बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ आप बड़े बेफिक्र होकर हंसते मुस्कुराते हैं, या उनका टाइम या उनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हंसी का एक राज है, कि जिनकी वजह से आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। तो आज उसका भी नाम बता दें कि कौन है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हंसते मुस्कुराते हैं, क्योंकि जी आज हम इसी मौजू पर कर रहे हैं बात। तो याद करें अपनी वो बात जिस बात पर आप बहुत ही ज्यादा मुस्कुराए थे, कब मुस्कुराए थे, क्योंकि भाई आज हमारा टॉपिक यही है। ऑल राइट, और इसी के साथ साथ जरा नजर डाल लेते हैं भाई कराची के मौसम पर। तो कराची का मौसम आज भी है खुशगवार, और अभी एक और दो दिन तक मजीद खुशगवार रहने की पेशेनगोई मौजूद है। लेकिन इस अच्छे मौसम में कोई ये खबर नहीं है कि जी बारिश होगी। बारिश से मुराद ये है कि जी बूंदाबांदी की और फुहार की पेशनगोई तो मौजूद है, लेकिन अंटिल एंड अनलेस मूसलाधार बारिश या कोई सिस्टम आने वाला है शहर कराची में इस माह, तो ऐसी कोई ताजा तरीन खबर मौजूद नहीं है। तो अगर ऐसी कोई होप आप रखे बैठे हैं, लेकिन वैसे हद तक कि कल भी जब मैं शाम में निकली तो मैंने देखा कि यही कोई 4-4.30 बजे के करीब के बादल आसमान पर मौजूद हैं, लेकिन काले काले बादल मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपका दिल चाह रहा है कि यार ये अब बरसें और ये अब बरसें, लेकिन ये बरस नहीं रहे हैं। सो देखते ये हैं कि ये बरसें या ना बरसें, लेकिन चलो कराची का मौसम इस वक्त अच्छा चल रहा है और दर्जा हरारत है 31, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है 32 और है काफी क्लाउडी वेदर। सो अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ट्रैक, सो एंजॉय।

0: सयाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर। सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
4: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.

ओके जी, तो आज डिस्कस की साल रहा है वो भी आपको बहुत मुबारक हो। इसी के साथ साथ मैंने कहा चलो जी जरा लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि आज कौन कौन से दिन जो हैं वो मनाए जा रहे हैं और उसका जिक्र करते हैं। अच्छा भाई, आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। ओ माय गॉड, दैट इज सो शॉकिंग। यानी कि मच्छरों को इतनी इज्जत मिल चुकी है माशरे में कि उनका पूरा एक अदद दिन सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। वाह भाई वाह, मच्छरों के बारे में तो बस उनके क्या ही कहने हैं कि भाई वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जा रहा है, तो इट मींस के क्या ही बात है। मॉस्किटोज आर कैरीड ऑफ आर डेडली डिजीजेस दैट अफेक्ट्स मिलियंस एनुअली एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज टाइनी बट डेंजरस इंसेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई बहुत सारे जो मच्छर हैं उनमें बहुत सारे डिजीजेस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं, और इसके लिए आपको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है कि जी आप जो है वो इस तरह के कोई ना कोई स्प्रे या मॉइस्चराइजर जो इसके अवेलेबल होते हैं जो मॉस्किटो से बचाव के लिए, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और इस वक्त भी वेदर ऐसा है और अब से कुछ माह बाद हम सर्दियों में भी दाखिल होने वाले हैं, तो सर्दियां आए या ना आए लेकिन मच्छर जरूर आ जाते हैं, तो इनसे हिफाजत बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ख्याल रखना भी आपका उतना ही जरूरी है। सो भाई आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जा रहा है, एंड आई फील सो जेलस यार। मतलब मैं मच्छर से जेलस हो रही हूँ, मतलब मच्छर से जेलस हो नहीं रही, मतलब मुझे हैरत हो रही है कि वाह भाई वाह, मच्छरों को इतनी माशरे में इज्जत दी गई है कि उनका दिन मनाया जा रहा है। दैट इज सो नाइस। खैर जी, मच्छरों से जेलसी की बात नहीं है, ये बात हकीकत है कि एहतियात बहुत जरूरी है, आपने अपना ख्याल रखना चाहिए मच्छरों के लिए। जिससे वो होता है ना कि जी मगरब के वक्त, मगरब से पहले आप घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दें, एहतियात करें, स्प्रे जरूर करें ताकि जो ये मच्छर हैं वो आपको ना काटें, क्योंकि इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे वायरसेस होते हैं और उसी के साथ साथ आपकी स्किन को भी मुतासर कर देते हैं। आपको जब काटते हैं तो जब दाना रह जाता है और हम उसे बड़ा ही बुरे तरीके से खुजा रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारी स्किन पर निशान भी आ जाते हैं। तो भाई एहतियात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं एक और ट्रैक की जाने, बातें हैं वापस हम ट्रैक के बाद।

0: It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Yes, everybody. So I'm back again. मैं आ चुकी हूँ वापस और आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है और वो तो जारी रहेगा ही क्योंकि हम और आप जो हैं वो दो बजे तक साथ साथ हैं. हमने आज आपसे सवाल ये पूछा था कि जी आप आखिरी मर्तबा खुलकर कब हंसे थे. कब हंसे थे भैया आप दिल खोलकर और कहकर लगाकर, तो वो वक्त कौन सा था हमें इस बारे में जरूर बताएं और किस वजह से हंसे थे ये भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं हमें. इसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. साथ ही साथ आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने वहां पर भी स्टेटस कर दिया है अपडेट. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर योर कॉमेंट्स. हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं ठीक ठाक. कहते हैं आई एम गुड. यस, आज इनके लंच में चिकन कढ़ाई है. कहते हैं आपके लंच में, मेरे लंच में आज बाहर का पराठा है. कहते हैं कि जी शो में दो दिन से आपको मैसेज भेज रहा हूं जो आपको नहीं मिले. हाँ भाई रशीद खान, हमें बिल्कुल आपके मैसेजेस नहीं मिले दो दिन से. तो कहते हैं चलें जी, इट्स ओके. चलो जी ठीक है. कहते हैं जी हंसी का कोई वक्त नहीं है. हंसने की बात पर हंसी आ ही जाती है. अब दूसरे शहर के सफर में बहुत हंसी आती रही. यस, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. अच्छा भाई, तो रशीद खान ट्रेवलिंग के दौरान बहुत हंसे और मुस्कुराए, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. हंसते मुस्कुराते सफर जो होते हैं ना, वो बड़े यादगार तरीन सफरों में से एक होता है और बड़ा मजा आता है कि जब आपके साथ एक ऐसी कंपनी मौजूद हो जो आपको मजीद हंसा रही हो, तो भाई मैं कहती हूँ उस ट्रिप का मजा ही दुबाला हो जाता है. तो चलें जी रशीद खान के ट्रैक की जाने चलते हैं, जो उन्होंने गाया तो नहीं है लेकिन उन्होंने इनसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की है. तो चलें जी इसे शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: ओके जी, तो इस ट्रैक को हमने शामिल कर लिया है। रशीद खान ने हमसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, तो हमने कहा चलो जी इसे शामिल कर लेते हैं। वैसे ही हंसते मुस्कुराने पर आज बात हो रही है और हम आपसे जान रहे हैं कि आप आखिरी मरतबा खुलकर कब हंसे थे। और इसी के साथ मैंने कहा मजीद दिनों को भी देख लेते हैं कि और कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे के हवाले से तो हमने आपको आगाही फराहम की, उसी के साथ साथ आज इंटरनेशनल हवालीन पिज्जा डे भी मनाया जा रहा है। ये भी एक अदद फ्लेवर है जो कि लोगों को अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ नेशनल चॉकलेट पाई डे भी मनाया जा रहा है। ओके, ये शायद वो दिन है जिसके बारे में शायद आप बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हो, बिकॉज चॉकलेट पाई एंड ऑल दो चीजें बनने तो लगी हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है कि लोग इसे बड़े शौक से खाया करते हैं। और इसी के साथ साथ आज जो है वो डेफोडल्स डे मनाया जा रहा है। ओके, दैट इज सो नाइस। ये एक फूल होता है जो कि आपने देखा होगा, और इस डेफोडल्स को देखकर मुझे याद आया कि आई एम नॉट श्योर, क्लास 6 या क्लास 5 की बात है, तो मेरी जो इंग्लिश की बुक थी वो डेफोडल्स की ही थी, मतलब उस पर लिखा हुआ था द डेफोडल्स इंग्लिश बुक, तो आई रिमेम्बर दैट। तो मुझे तब इस फूल के बारे में, मतलब थोड़ा कहते ना आप एक चीज को याद रखते हैं, तो मुझे डेफोडल्स जो थे वो याद थे, तो आज इनका भी दिन मनाया जा रहा है। और हर फूल की एक अपनी अपनी खसूसियत होती है, और फूल तो अल्लाह पाक ने इतने प्यारे और खूबसूरत बनाए हैं कि इन्हें देखकर आपका चाहे जैसा भी मूड हो, आप गुस्से में हो, आपका मूड अच्छा ना हो, आप स्ट्रेस में हो, लेकिन इन फूलों को देखकर ना आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि फूल होते ही इतने खूबसूरत हैं। खैर जी, इसी के साथ साथ ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आकर आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, जरूर बताएं कि आखिरी मरतबा आप खुलकर कब हंसे थे। इस पर होगी मजीद बात, तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
1: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: आजान जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएम 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मजाफात में आजान जोहर का वक्त हुआ चाहता है।

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
0: 0311-111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. This is the Lunchtime Special. Only on FM 100.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी सो बैक. और भाई साबिर भट्टी का मैसेज आ चुका है, कह रहे हैं कि जी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं. ओ माय गॉड. तो इट मींस कि साबिर भट्टी आपसे 15 साल पहले खुलकर हंसे थे, उसके बाद से आपने हंसना ही छोड़ दिया है. क्यों भाई क्यों? आई रियली वॉन्टेड टू नो दिस, क्योंकि भाई शादी के बाद तो सब बड़े खुश हो जाते हैं. और साबिर भट्टी आप 15 साल पहले खुलकर हंसे थे, उसके बाद से आपने हंसना क्यों छोड़ा है? तो जरा हमें तफसीलात दें, हम इंतजार कर रहे हैं. बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी में आ गई हूं कि ऐसा क्या हुआ है कि आप 15 साल पहले मुस्कुराए थे. तो व्हाट इज द मसला? लेकिन यहां पर ना साबिर भट्टी सर, सवाल आपसे नहीं बल्कि आपकी बेगम से भी होता है. हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आखिरी मर्तबा कब खुलकर हसीन थी. क्या वो भी आखिरी मर्तबा 15 साल पहले खुलकर हसीन थी या फिर नहीं? वो तो रोज हंसती मुस्कुराती रहती हैं. तो भाई जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें और बताएं कि आप आखिरी मर्तबा खुलकर कब हंसे थे. आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर स्टेटस अपडेटेड है, आप लोग वहां भी कमेंट करके बता सकते हैं कब हंसे थे. वो वाली हंसी जो दिल से निकली और कुछ पल के लिए सारी फिक्रें भुला दी. तो ऐसी वाली हंसी के बारे में हमें जरूर बताएं. किस बात पर इतनी हंसी आई थी जरूर बताएं हमें, क्योंकि ये गुड मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के जो आपको याद भी नहीं होते. और समटाइम्स आप इतना ज्यादा हंस देते हैं कि आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं तो इस तरह हंस गया. लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है. तो कब हंसे थे भाई आखिरी दफा आप खुलकर हमें जरूर बताएं. जब तक हम चलते हैं एक और ट्रैक की जाने और आते हैं वापस के बाद.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
3: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Genie in Radio. Radio.

जी जनाब, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप मैसेजेस हमें कर रहे हैं 3636 पर एंड यू कैन ऑल्सो गिव अस योर फीडबैक ऑन और योर मैसेजेस ऑन facebook.com/rj.jasmine JZMINE. अच्छा, हमारे पेज पे जो है वो कल टॉपिक सजेस्ट हुआ था और इरम ने हमें सजेस्ट किया था वो टॉपिक. उन्होंने कहा था कि आज प्लीज वो शो पे रखें. सो होपफुली वाली बात तो ये कि इरम, अगर आप सुन रही हैं तो हमने आपका टॉपिक जो है वो चूज कर लिया है और आज हम आपके टॉपिक पे ही शो पे बात करेंगे. एंड द टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो है टाइम जो है इतने जल्दी गुजर जाता है. छुट्टी वाला दिन आता है वो भी इतना जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता है. और आई मस्ट हैव टू से कि छुट्टी वाला दिन ही सबसे छोटा दिन होता है जो नहीं पता चलता है. सो आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है ऐसा कौन कौन से काम जो है वो छुट्टी वाले दिन जो है निपटाते हैं. लेट अस नो ऑन 3636 और यू कैन ऑल्सो मैसेज इन ऑन facebook.com/rj.jasmine. हमने कहा था ये टॉपिक रखिएगा कि छुट्टी वाले दिन जो है कौन से काम जो है वो कम्प्लीट करने का मौका मिलता है. सो वो आज हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं.

0: Okay, so now welcome back. Aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. And aap log bilkul messages karein 36364 and facebook.com/rjazmin pe. Okay, Iram ne hame aaj ke show pe jo hai wo topic suggest kiya hai and it's about ke aap log ka chutti ka din jo hota hai wo kaise guzarta hai. What are the basic things jo aap sochte hain ke ye hum वैसे तो मैं आपको बताऊं छुट्टी वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसे हमें लगता है कि हाँ छुट्टी है लेकिन उस दिन भी वाकई छुट्टी नहीं होती क्योंकि उस दिन हम अपने पेंडिंग काम कर रहे होते हैं जो हम नॉर्मली वीक डेज में अपने कामों की वजह से अपने उसमें नहीं कर पाते रूटीन में नहीं पॉसिबल होता तो हम सोचते हैं कि आप छुट्टी वाले दिन करेंगे तो छुट्टी वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती है काम ही होता है. ओके सो उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है. आप हमें मैसेजेस करके बता सकते हैं और आप facebook.com/rjazmin पे भी कमेंट करके बता सकते हैं. ओके शनीला ने हमें मैसेज किया है. अस्सलाम वालेकुम आरजे जैस्मिन. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र है. आप बताइए आप कैसी हैं शनीला. प्लीज प्ले रहीम शाह का सॉन्ग है जा सनम जा. और छुट्टी वाले दिन सारे काम ही करने होते हैं बाकी दिनों से ज्यादा ही होता है. देखा अभी मैं यही बात कर रही थी कि ऐसा होता है. हमें लगता है छुट्टी वाला दिन जो है वो आराम का होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है. छुट्टी वाले दिन ही सबसे ज्यादा काम करने पड़ते हैं जो हमारे अपने काम आम दिनों में रह जाते हैं. ओके रमशा ने हमें मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम रमशा. बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए आप कैसी हैं. अच्छा इन्होंने बिल्ली सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है. चलो ठीक है जरूर प्ले कर देते हैं आपके लिए रमशा. इनफैक्ट अभी मैं आपके लिए चला देती हूँ सॉन्ग फिर जब वापस आएंगे ब्रेक से फिर हम नॉट ब्रेक फ्रॉम द ट्रैक कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे और फिर शैनिला की रिक्वेस्ट की तरफ जाएंगे. सो मिलते हैं इस गाने के बाद. द ट्रैक इज बिल्ली.
1: भाइयो घबराना नहीं यहाँ नहीं पड़ सकती कोई रे. खत्म हो गया सबका वेट क्योंकि अब आ रहे

0: the music. Take control.
1: Control.
0: Let the music take control. That is FM 100 Pakistan.
1: Listeners, tell us about FM 100.
2: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
3: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
1: number one music station. FM 100. 100. 100.
4: Your favorite number on my fingertips. Fingertips. Catch your favorite number within no time.
5: No time.
4: Genie in a radio.
5: Genie in a radio.
4: With your very own RJ, Jasmine.
5: Jasmine. Jasmine.
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा एक करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
7: 100 FM।
8: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
9: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैज कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका.
10: At shopping of 5,000 rupees
9: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
10: भागो!
11: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
14: तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
15: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: 100 FM।
17: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जिस टाइप के शायद दिन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट 3636 पर भेज देना है और साथ में facebook.com/orjit.jasmine पे आप अपना मैसेज हमें चाहें तो वहां भी कर सकते हैं. सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट छुट्टी वाले दिन जो है वो आप अपने कौन से ऐसे काम होते हैं जो कंप्लीट करते हैं, किस हवाले से और कैसे आपकी छुट्टी गुजरती है आप बता सकते हैं. ऑल्दो अभी तो छुट्टी नहीं है लेकिन हम बात कर रहे हैं छुट्टी के दिन के हवाले से. अच्छा, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, आपको पता है मौसम जो है वो काफी हद तक चेंज हो गया है एंड शुक्र अल्लाह का गर्मी अब थोड़ी कम हुई है. और इसी हवाले से जो है अभी जो एक आम मसला फैला हुआ है, इट इज अबाउट एक तो फ्लू कफ बहुत हो रहा है, यानी नज़ला खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हद तक जो है वो फैल चुका है. तो आज हम उसके हवाले से थोड़ा सा शो पे कुछ टिप्स आपको बताएंगे कावे के हवाले से. अ गुड कावा इज वेरी नेसेसरी स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ वेदर, जो ज्यादा जरूरी है. बड़ा आसान सा है और क्योंकि अभी जो है वो फ्लू का मसला और खांसी का मसला बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है, तो कुछ मैं आपको रेसिपीज बताऊंगी. बड़ी आसान सी रेसिपीज हैं उन कावे की, तो आप लोगों ने जो है वो डेफिनेटली इस्तेमाल भी करना है ताकि आपको थोड़ा फायदा भी हो. नॉर्मली भी आप ये पी सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम आपको रेसिपी बताते हैं जिंजर और लेमन कावा की. ठीक है, बहुत आसान है. एक कप आपने पानी लेना है और हाफ इंच जो है वो फ्रेश जिंजर लेना है. सही है, कटा हुआ ले लें तो या थोड़ा सा यू नो पिसा हुआ ले लें, सही है. और एक दो इलायची लेनी है, एक टीस्पून आपने जो है शहद का लेना है और एक टीस्पून आपने लेमन जूस का लेना है. सही है, बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई तीन चार इसमें चीजें पड़ेंगी और ऐसी चीजें कि रोजमर्रा हम इस्तेमाल भी करते हैं. अच्छा, अब आपने जो है वो अदरक को और इलायची को थोड़ा पानी में 5 मिनट तक आपने थोड़ा सा हल्की आंच पर बॉईल कर लेना है. ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपने जो है वो उसको छान के थोड़ा ठंडा होने दें, फिर उसमें शहद और लेमन ऐड कर लें. सही है, ये तो हो गया आपका तैयार खुद जबरदस्त सा कावा. अच्छा, अगर आपको जो है वो कंजेशन हो रहा है, यानी आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, तो आप उसमें थोड़े से जिंजर के साथ साथ 2-3 मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं. अच्छा, अब जरूरी बात यह है कि जो इससे ये कावा होता है वो जो फ्लू को प्रॉपर क्योर नहीं करता, लेकिन गला जो है जाहिर है गर्म चीज पीने से जो है गला एक सूदिंग इफेक्ट आ जाता है और दूसरा ये है कि आपकी खांसी को कम करता है, तो इसलिए जरूरी होता है. ओके, सो मीनवाइल एक और टिप्स भी हम आपसे शेयर करेंगे, रेसिपी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द रिक्वेस्ट ऑफ शैनीला. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. दिस इज सनम बाय रहीम शाह.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/fm247365.
6: FM247365.
7: The Sound Generator. FM 100.
8: Genie in Radio.

Okay, guys, welcome back. The show is called Genie Na Radio. Aap suna FM 100 Pakistan. Okay, so it's 46 minutes past 2 on the dial right now. Hamare paas Shahid ka message hai. Walaikum assalam. Main bilkul theek hoon Shahid. Aap bataiye aap kaise hain? Shanila ne message kiya. Thank you so much, RJ Jasmine. You're most welcome, Shanila. Koi masla nahi hai. अच्छा, मैं आपको कुछ जो है रेसिपी बता रही थी, बड़ी मजे की वो है, मजे की कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कावा अच्छा भी होता है. इट्स नॉट लाइक ए कावा बुरा होता है, नहीं, अच्छा होता है यार. और क्योंकि मौसम ऐसा है, तो मौसम के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ बड़ी आसान सी रेसिपी. एक रेसिपी अभी हमने आपको कावा की बताई थी, दैट वॉज लेमन जिंजर कावा. अभी जो मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपी, इट्स अबाउट कश्मीरी स्टाइल कावा, ठीक है. और आपने उसके लिए जो है एक कप पानी लेना है, 1 टीस्पून आपने ग्रीन टी लेनी है, और 2 जो है वो आपने इलायची लेनी है, 1 स्मॉल जो है वो दालचीनी का टुकड़ा लेना है, और 2-3 जो है आपने आमंड्स लेने, यानी बादाम लेने हैं कटे हुए, सही है. और शुगर की जगह आप हनी यूज कर लें. अब आपने पानी में जो है वो इलायची और दालचीनी जो है वो आपने 2 से 3 मिनट बॉईल करनी है, सही है. ग्रीन टी ऐड करके आपने फिर 2 मिनट तक उसको रख लें, और कप में छान कर फिर वो जो कटे हुए बादाम है और शहद है वो एंड में आप डाल लें. ये भी बड़ा अच्छा है फ्लू वगैरह, और अगर आपका गला खराब है तो इसमें बड़ा हेल्पफुल रहेगा.

kids, and welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड बिल्कुल आप लोग हमें मैसेज कर रहे हैं 3636 पर एंड तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप की चैनल लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम आपकी रिक्वेस्ट 3636 पर भेज देना है एंड facebook.com/rj.jasmine JZMINE इस पर भी आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं. ओके सो हम लोग आपसे बात करने वाले थे अबाउट द ड्रेसिंग ट्रेंड्स इन 2026. तो इस बार जो है वो वाइड लेग जीन्स एंड वाइड ट्राउजर्स जो हैं वो बहुत इन हो गए हैं एंड यू कैन सी मोस्टली जो है ये चीज. अच्छा ये ट्रेंड जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में इन हुआ है वाइड लेग जीन्स का एंड जो वाइड ट्राउजर्स हैं उनका. इस वजह से बिकॉज ऑफ द जेन ज़ी दे थिंक के इट लुक्स कूल तो ये ट्रेंड में चला गया है एंड प्लस कूल होने के साथ साथ यू नो इट फील्स कम्फी सो इस वजह से दिस ट्रेंड इज इन.

Okay, also 90s for, you know, inspired minimal makeup and minimal dressing, minimal look with the jewelry a light bit. Like clean dresses, neutral colors and sleek accessories. Neutral colors mein jo hai, agar hum baat karein about the light one, ye jo hai wo kafi trend mein in hai 2026 mein. जैसे टील कलर्स हो गए, लाइट पिंक के शेड्स में जितने कलर्स हैं वो हो गए, मतलब मोस्टली लाइटली कलर्स को जो है वो प्रेफर किया जा रहा है. In 2026.

मतलब पहले हम यूज करते थे, ठीक है, एक मीडियम लेवल के साइज का हैंडबैग होता था, लेकिन अभी टॉट बैग्स इन है विद द बिगर साइज, यू नो, मतलब उसमें लड़कियां इतना सामान रख सकती हैं कि उनका सारा मसला जो है वो हल हो गया. इट मीन्स के फैशन का फैशन, ट्रेंड का ट्रेंड, एंड टॉट बैग्स विद द बिगर साइज, एंड यू कैन पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर बैग इजिली. सो दीज आर सम ट्रेंड्स. कुछ और भी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक सॉन्ग की तरफ जाएंगे. एंड आप लोग मैसेजेस करते रहिए. हमारे पास रमशा ने मैसेज किया था, रमशा का मैसेज हमने इंक्लूड कर लिया था. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, इसी के साथ साथ बिलाल ने हमें मैसेज किया था. वालेकुम अस्सलाम बिलाल, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसे हैं. ओके, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और इनकी रिक्वेस्ट कहाँ. ओके, फितूर का ओएसटी रिक्वेस्ट किया था. सो बिलाल, इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड शो का नाम है जीनी इन अ रेडियो और आप सबको ही पता है इस बारे में. आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं फेवरेट ट्रैक्स के लिए. तरीकेकार बहुत ही आसान है. छह चाय देन लीव स्पेस सबका मैसेज आपका नाम और रिक्वेस्ट 3-6-3-6 पर भेज देना है. साथ में आप लोग facebook.com/rj.jasmine इस पे भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं. अच्छा, हम लोग ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे थे तो मैं आपको बताती चलूं कि मिडी स्कर्ट्स जो हैं वो भी बहुत इन है डेनिम के विद द लेस एंड फ्लोइंग फैब्रिक्स. यू नो ये काफी पॉपुलर चल रहे हैं. ऑल्सो पॉलका डॉट्स एंड चेक्स का जो है वो भी प्रिंट जो है काफी स्ट्रांगली इन है 2026 में. ओके, बैग्स के हवाले से मैंने आपको बताया. अच्छा, विंटर ड्रेसिंग के हवाले से बात करें तो इस बार जो है वो बोल्ड शोल्डर्स जो हैं काफी इन है स्पेशली जैकेट्स में. एंड यू नो बोल्ड एंड स्लीक स्टाइल जैकेट्स जो होती हैं वो काफी इन है इस बार. और नॉर्मली भी जो है जो लाइट वेट मटेरियल होता है जिसको हम समर्स में भी वेयर कर सकते हैं वो भी इन है. ओके, शूज के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें फ्लैट्स एंड लोफर्स आर वेरी वेरी ट्रेंडी इन दिस एयर. कंफर्टेबल फ्लैट जो हैं और उन फुटवेयर्स को जो है वो ट्रेंड का हिस्सा बनाया गया है और बन भी रहा है.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine.

0: Radio, radio.
1: Okay, Janab, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और हमारे पास मैसेज आया है मुजीब का, मुजीब रहमान मारफानी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. कहना है आपका शो जो है VIP है, बेहतरीन है. अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया. हाँ हाँ, फेसबुक पेज बिल्कुल है, मैं तो बताती रहती हूँ. facebook.com/rj.jasmine JZMINE. ठीक है, वहां से हम इवन मैसेजेस भी शामिल करते हैं मुजीब. सो यू कैन गो एंड यू कैन फॉलो द पेज एंड लाइक एज वेल. ओके, सो ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं. विच ट्रेंड्स आर इन 2026 अबाउट ड्रेसिंग. तो वेस्टर्न ड्रेसिंग के हवाले से आप लोगों को बता दिया, अभी हम ईस्टर्न ड्रेस के हवाले से जो है वो आउटफिट्स के हवाले से बताएंगे कि क्या इन है. जैसे वाइड लेग जीन्स इन है इस दफा, वैसे वाइड लेग यू नो शॉर्ट मीडियम ट्राउजर्स एंड विद वाइड लेग शलवार. ठीक है, ये भी बड़ा इन हुआ हुआ है विद द लॉन्ग कुर्तीज एंड यू नो स्ट्रक्चर्ड बैग्स. जैसे टॉट बैग्स हो गए, स्ट्रक्चर्ड बैग्स हो गए विद काइंड ऑफ कह सकते हैं मीडियम स्लाइस कह रही हूँ, मीडियम साइज क्लचेस. These are in. And एक स्ट्रेट कुर्ता विद प्लस वाइड लेग ट्राउजर. जैसे वाइड लेग जीन्स है, वैसे वाइड लेग ट्राउजर्स भी बहुत इन है इस दफा ईस्टर्न के साथ. और ईद पे तो आप लोगों को पता है इस दफा वो फर्शी शलवार का बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रेंड निकला है, वो अभी भी इन है. और फर्शी शलवार अब टोटली इन हो गई है विद मीडियम साइज कुर्तीज, और लॉन्ग कुर्तीज के साथ भी अच्छी लगती है विद यू नो मिनिमल एक्सेसरीज विद मिनिमल मेकअप. ऑल्सो प्लेन मोनोक्रोम सूट जो है वो बड़े इन है. लाइक यू कैन वेयर अ कलरफुल प्रिंटेड यू नो बॉटम विद अ प्लेन शर्ट, अ प्लेन कुर्ती. ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपने एक चीज प्लेन पहनी हुई, एक चीज प्रिंटेड पहनी हुई, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है कंट्रास्ट के साथ. और हाँ, पेस्टल कलर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, यू नो पेस्टल ब्लू हो गए, पिंक हो गए, ये शेड्स बड़े इन हैं आजकल. और इन्हीं ईस्टर्न ड्रेसेस के साथ जो है फ्लैट्स, द फ्लैट सैंडल्स यू कैन से, यू कैन वेयर लाइक फ्लैट चप्पल्स, दीज आर टोटली इन विद द ईस्टर्न वेयर समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप फ्लैट वेयर के हुए. हील्स जो हैं वो थोड़ा सा लो उस पर चली गई हैं, फ्लैट्स आजकल इन हैं. ओके, इसी के साथ साथ जो है मैसेजेस शामिल कर लेते हैं. नूरुल खान ने हमें मैसेज किया है पेज पे एंड रिक्वेस्ट किया है हरकले सॉन्ग प्ले कर दें. ठीक हो गया जनाब, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. ओके, बदर ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम बदर, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं. रिक्वेस्ट किया है इश्क सॉन्ग प्ले कर दीजिए फहीम अब्दुल्ला का. ठीक है जनाब, जरूर प्ले कर देते हैं. अभी नूरुल्ला की रिक्वेस्ट प्ले कर देते हैं, विच इज हरकले. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: space your text message. Send it to 3636.
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: वाटिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी हाने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम कटे संगो था बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ए ढेर सारा इनाम कटियो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
3: 100 FM
4: छम छम छम किताबे लेके निकले हम अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: face your text message. Send it to 3636.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक के सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या PTA CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या PTA की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.ncci.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbb.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
0: facebook.com/fm247365
6: Genie in radio.

ओके facebook.com/rjasmine पे आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वहां आप जरूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

पसंद मुझको पास आके बैठ चेक कर फ्लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर डर के करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And
5: Sarsabz Nitro Foss ko laga aur jeet taja.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.

0: Motiwala Bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
2: सर्च सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर्च सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं तो इंतजार किस बात का अभी डिपॉजिट करें और जीतें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं
4: मतलब
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya, ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.

0: इजी वाला बैंक.
1: Well, it's happening आज भी. So keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका.
2: At shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: किसने कहा था पैसे

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत तो जवाबित लागू है।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: And
8: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
6: And
9: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
11: समझे आपने आपको से 3 बार मौत देखे
12: टाइम से ऐसे के मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
13: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब कुटिया।
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز

0: सेक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदामात आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है. अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं. सफरे हज में आपका खिदमत गुजार. जहां ख्वाब वहां HBL. शराइत जवाबित लागू है.
4: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
6: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
4: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: Evening drive time with DJ.

0: देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cash back और Hyundai Elantra जीतने का मौका
4: at shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: किसने कहा था पैसे बचा?

0: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू है।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Dagestan's number one sound.
1: FM 100.
0: FM 100.
1: Number one on the FM dial.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
8: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
7: मतलब?
8: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
7: स्पेशल तो लग रही है।
8: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
7: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
2: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराय तो जवाबित लागू है।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: एंड
6: सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
7: 100 FM।
8: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल जुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
9: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365. 100
11: Evening Drive Time with

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
4: Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja.
3: And
5: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
3: And
6: Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तैद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
10: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
12: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
14: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें तो सवाबित लागू हैं।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा. श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक। अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365
5: Today's hit music.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: Capital Bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: FM 100's time check. It's 8 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
3: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू हैं।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. FM 100.
5: 31 साल FM 100. आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।
6: The country's number one choice for the best music variety.
7: Best music variety.
6: FM 100. This party jams.
7: This party jams.

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफलूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
4: 100 FM।
5: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
1: This is FM 100.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365.
7: In the stream of life, in the stream of life, in the stream of life, there is only 100 FM.
8: 24 hours.

0: FM 100's time check. It's 9 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: Facebook.com/FM247365.
13: Let's celebrate
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

हेलो माइक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज और कैसी तबीयत? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे और ठीक ठाक होंगे। सुन रहे FM 100 और जनाब मुलाकात होती है 9 to 11, लेकिन कभी कभी बीच में जरा छुट्टियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जरा नाराज भी होते हैं कि अयाज साहब इतनी छुट्टियां क्यों कर लेते हैं। मैं अब क्या बताऊं, चलिए क्या 2 घंटे बताने में बताता रहूंगा। आप भी कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं KHI space टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। मौसम के हवाले से कुछ कहना चाहें, हालात अपने घर के वो तो ना ही बताओ तो अच्छा, बोर हो जाएंगे। हर आदमी परेशान लग रहा होता है, लेकिन ये कि जहां पैसे आ रहे हैं वहां बहुत हैं, कुछ भी नजर आ रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं। तो ये हमारे पर है कि हम अपने पे गम तारी कर लें, महंगाई के रोने जो है वो रोना शुरू कर लें। बातों के ऐसे भी मैंने लोग देखे जो मुश्किल हालात में भी खुश रहते हैं, भाई कोई बात नहीं। तो इस तरह का लाइफस्टाइल बना लें क्योंकि ये तो आदत हो गई। अच्छा जनाब, इसके अलावा कराची आ रहे हैं तो वेलकम, कराची से जा रहे हैं तो बखैरियत से जाएं। बर्थडे जिन जिन लोगों की है, हैप्पी बर्थडे। रश में फंसे हुए हैं तो भाईजन कोई बात नहीं, अब तो फंस गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चले 9 to 11 तक, यानी 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे ट्रैक सुनाऊं ताकि आपका जो टाइम है वो बड़े अच्छे से गुजरे। तो पहला ही ट्रैक कमाल है।

थोड़े थोड़े बैकग्राउंड में रख लेते हैं इस ट्रैक। आसिफ भाई कैसा, अरे भाई गाने कैसे लगे सर? आसिफ भाई भी शौक रखते हैं गाने सुनने का, खासतौर पर वलैती यानी अंग्रेजी, समझ आए ना आए लेकिन एंजॉय करते हैं भाई। और वैसे भी आसिफ भाई समझ के करना क्या हमने, पेपर थोड़ी देना, अब एंजॉय करो भाई म्यूजिक को। अब ये कक समझ नहीं आ रही हमें, लेकिन हम खुश हैं।

क्या कहने। अच्छा अब जो समझ आ रहे हैं उससे हमने क्या कर लेना है, मतलब क्या हमने तीर मार लेना अगर जो गाने समझ में आ जाए, फर्ज करो जैसे कि ये आ रहा समझ में, तो हमने क्या क्या कर लिया हमने। लेकिन एक बात बताऊं, गाना है अच्छा, इंजॉय करें।

0: भाई जनाब सदियों में ढाल दे सिक्वेंसर बैंड याद आ गया, लेकिन ये तो जरा नए स्टाइल से गाया है, लेकिन कमाल ये भी ट्रैक है। और आसिफ भाई कह रहे हैं वो महबूबा को मना रहे हैं। आसिफ भाई आपको बड़ी समझ आ रही है अरबी, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, बेहतरीन बात हो गई। अच्छा भाई अरबिक म्यूजिक जबरदस्त है और इस सॉन्ग को भी इंजॉय करनी है आंखों आंखों में। संजीता जी क्या कहने, एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक आसिफ भाई के लिए मैंने जरा निकाल के रखा है। केयरलेस विस्पर माइकल नहीं जॉर्ज माइकल, जॉर्ज माइकल जी के क्या कहने। आसिफ भाई रेडी हो जाएं, थोड़ी देर में सुनाता हूं मैं, पहले एक मैसेज पढ़ लूं। मुजीब रहमान मरफानी साहब कह रहे हैं फ्रॉम शिकारपुर, सरकार कैसे हैं आप, शिकारपुर के आचार याद आ गए मुझे। और आसिफ भाई आप तो खाते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा पानी वाले होते हैं बड़े, इतना गाजर वाजर बिल्कुल टहल रही होती फुल टाइम, लेकिन बहुत मजे का। अच्छा जी उनके जो माय सन डॉक्टर मुनीब रहमान मरफानी वो भी सुन रहे हैं, चलें जनाब क्या बात है। डॉक्टर अबू हुरैरा मरफानी और बीबी गुलाम जोहरा मरफानी, क्या बात है सबका, अगर नाम गलत लिया तो माफी। अदिला बहन आ गई है, कह रही है सलाम प्यारे भाई अयाज, कैसे हो संजीदा आप ही को सलाम और एक सॉन्ग। ठीक हो गया जनाब, सलाम अयाज आप कैसे हो, संजू को सलाम। कौन है भाई ये, नाम नहीं लिखा। अच्छा जनाब चार मिनट की ब्रेक और उसके बाद आसिफ भाई आपका पसंद का गाना थोड़ी सी देर में।
1: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: 1 का हफ्ते लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी हाँ तवा भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम कटे संगो था। बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करो ए ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।
3: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत और जवाबित लागू है।
7: 100 FM
8: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

राइट जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं 3636 पर। और जनाब मिस कॉल भी कर रहे हैं लोग भाई। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं मिस कॉल कर रहे होते हैं, यानी इतनी बचत भैया, ये क्यों करते हो यार। अच्छा भाई, मुश्क लैला आ गई। मुश्क लैला, क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? FM 100 की रौनक, आज की प्लेलिस्ट वाह है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अभी तो आगाज हुआ भाई। गयासुद्दीन बलबन आ गए। गयास भाई किधर, मुल्तान में है या लाहौर? वही तशरीफ रखी हुई है, जरा इस पे रोशनी डालें थोड़ी सी। सबको सलाम दे दिया, पूरी टीम को सलाम कह दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन बलबन। अच्छा जनाब, इसके अलावा संजीदा कह रही है संडे पीर का शो बहुत शानदार था मगर शिरकत नहीं कर सकी, मोबाइल ने आंख मचोली का खेल खेला था। कोई बात नहीं, खैर है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं होती बस। और इसके अलावा पुराने गानों की जितनी तारीफ करें कम है। कम क्यों है, उल्टी का क्या करो भाई, कम वाम कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें फुल चाहिए भाई तारीफ। अच्छा जी, आपको और सब सुनने वालों को सलाम रुबाब। अच्छा, संजीदा बेवफा को सलाम। हाय संजीदा बेवफा को सलाम। अयाज, आप जैसा आरजे कोई नहीं, बाकी सही कह रहे हैं, इतना फारिग आरजे कोई नहीं होगा। और कह रही है आपकी आवाज सुन के सुकून मिलता। अच्छा, अरे नहीं करे, नहीं करे, मैं अजीब प्राउडनेस फुल टाइम, शुक्र है कॉलर वॉलर वाली शर्ट नहीं पहनी हुई, कॉलर एकदम नहीं करो यार, बस ये आपका रुबाब जी प्यार है, मोहब्बत है और कुछ नहीं। अच्छा, शो चलते वक्त ब्रेक बहुत उलझन में लगती है। सर आपको तो लगती है, लेकिन हमारे दिल पे जो ठंडक और राहत मिल रही होती है, सोच है आपकी मरफानी भाई, बर्फानी भाई, आप सोच है आपकी, ये जितने ज्यादा ऐड होंगे उतना हमें खुशी होती है कि या अल्लाह FM तरक्की करता रहे और इसी तरह हमें तनख्वाह मिलती रहे वक्त पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल चिंता, दुआ करें कि और ज्यादा कवर चल मिले। और प्लीज प्ले अली जफर, नहीं सर रिक्वेस्ट नहीं करें मरफानी भाई, बस आज के लिए इतना काफी है, और ज्यादा नहीं, इतना ना फैले, एक हमने प्ले कर दिया, ठीक है ना मेरा प्यारा सा भाई। अच्छा जनाब, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक, यार ये बड़ा जबरदस्त ट्रैक मिला पंजाबी, मिसेस फारूक मेरी प्यारी सी स्वीट सी, वो भी सुनती रहती है और मैसेज करती रहती है। अच्छा जनाब, एक और जबरदस्त ट्रैक, और वो है कैसे, जरा चेक करें आप।

भाई जनाब इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं, सारे इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं जरा उनको पहचानने में जरा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने कहा ऑनर ही ढूंढ लूं। पश्तो गाने की बात चल रही है, रमजान पठान की बात चल रही है, तो जरा ट्रैक थोड़ा सा। गयास भाई बहुत मुबारक हो, गयास भाई अपने कामों में लगे हुए, और मेरी बहुत सारी दुआएं गयासुद्दीन बलबन आपके लिए कि आप जो है ना इसी तरह जिंदगी में अच्छे अच्छे फैसले करते रहें।

हाय हाय क्या बात है, जबरदस्त ट्रैक। और फूफा कैसे हो आप, ठीक हो? खैरियत से? फूफा जी ने मुझे कॉल कर दी, फूफा खुश रहो, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और फूफा के लिए खास तौर पर ये वाला ट्रैक मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं वैसे, ये बात तो है। इसके अलावा चाची याद आनी है मेरी, चाची स्वीट सी प्यारी सी, चाची के लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत अता फरमाए। आमीन बोले मैं सारे मिलके, आमीन सुम्मा आमीन। और गयास के लिए बहुत सारी दुआएं संजीदा की तरफ से, और गयासुद्दीन थैंक्स कह रहे हैं, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show. Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin. FM 100's where the vibes are proud.
1: FM 100's time check. It's 10 p.m.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
1: FM247365.
3: FM247365.
1: FM100. 31 साल FM100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
4: Yummy.
5: Adorable.
4: Zabardast.
5: Seen a guy crush on you.
4: Ye pyaar to suno yaar.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी आप लोगों के पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जफर भाई हमें सुन रहे हैं गार्डन से। जफर भाई कैसे हैं आप? प्रोग्राम की तारीफ करने का बहुत शुक्रिया सर। और दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। भाई खूबसूरत बात जफर भाई, बहुत आला बात की आपने, ऐसा ही होना चाहिए। और संजीदा जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, एक शख्स को आज काफी अरसे बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्या वो अस्पताल जा पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार। क्या से क्या बना दिया उसको, देखें आप जरा। अच्छा जनाब एक और ट्रैक, जरा बातें जरा कम, और ट्रैक जो है वो शामिल करते हैं, बहुत ही जबरदस्त गाना। एंजॉय करें, मैसेजेस करें, किए चार स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: क्या कहने इस ट्रैक के भी और जॉन एलिया साहब की शायरी के भी। वाह वाह वाह, शायरी से मुझे याद आया वो हबीब जालिब साहब, बड़े जबरदस्त नामवर शायर और उनकी साहबजादी। मैं देख रहा था क्लिप एक फेसबुक के ऊपर, वो खाना बना रही है रोड पे और वो किस तरह अपना रिस्क कमा रही है। अच्छी बात है, मेहनत कर रही है, लेकिन ये है कि यार हम अपने आर्टिस्टों की, अपने शायरों की, हबीब जालिब कोई नाम छोटा मोटा, मतलब कैसा नाम है, कदर क्यों नहीं हम यार। मगर मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये एक मेरी दिल की बात थी जो मैंने कह दी। काश हम अपने शायरों का, उस्तादों का, इनका जरा एहतराम करें, इनको इज्जत दें। लेकिन चले, मैं कहता रहूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे। नियाज बहादुर भाई आ गए बल्दिया टाउन कराची से। नियाज भाई कैसे हैं आप? अयाज भाई हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। मेरी तरफ से अयूब भाई को सलाम। अयूब भाई पता नहीं सुन रहे या नहीं सुन रहे, मगर मेरी तरफ से उनको सलाम। और इसके अलावा कह रहे हैं कि एक सॉन्ग की फरमाइश है, आवाज मुसरत नजीर, वो पता नहीं गाना देखो ना, रिक्वेस्ट नहीं करो। नियाज भाई रिक्वेस्ट नहीं करते, अच्छे बच्चे रिक्वेस्ट नहीं करते। अच्छा जनाब, इसके अलावा जफर साहब जो गार्डन से हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, रेडियो जब आए थे आप रेडियो में तब से सुनता आ रहा हूँ और आप बहुत अच्छे हो, सबसे बहुत मोहब्बत से बात करते हो, अल्लाह आपको खुश रखे आमीन। अरे सरकार बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार, बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। रुबाब आ गई है, रुबाब की हाल है? अयाज आपका शो FM आपकी वजह से ही नंबर वन चैनल मालूम। अरे ऐसा कुछ नहीं है रुबाब, हर आदमी, हर आरजे टिका के मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसकी मेहनत से FM मंडेड जो है ना, वैसे तो माशाल्लाह FM मंडेड है ही माल। हाय मेरी प्यारी सी चाची, चाची खुश रहे आप। और चाची ने इतनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात, क्या कहूं मैं, कह रही है कि वक्त ताल्लुक की हकीकत बता देते हैं। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या लिखा है? चाची तो अच्छी अच्छी बातें हमें लिखती रहती है, लेकिन मैं क्या करूं, टाइम कम मुकाबला सख्त। और नेक्स्ट ट्रैक की जाने फिर बढ़ते हैं। इस गाने की बड़ी रिक्वेस्ट आती रहती थी, आज खास तौर पे क्यू शीट में शामिल किया है। और क्या कहने, हमारे साथ जनाब नदीम अंसारी भाई हैं, हमेशा की तरह प्यार से मोहब्बत से अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मैं लेट सलाम कर रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं। और इसके अलावा नई एंट्री जो हुई है, बिलाल कैसे हो मेरे भाई, ठीक हो, खैरियत से हो? वाह वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, मैसेजेस करेंगे KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636। पहाड़ों की कसम, ओए होए, पहाड़ों पर जो बैठ के हमें सुन रहे हैं उन तमाम दोस्तों के लिए

हमारे प्यारे उस्मान भाई आते हैं तो थोड़ी सी जरा टेक्निकल चीजें जरा सेट कर देते हैं। बहरहाल जनाब उस्मान भाई दी ग्रेट, बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको जरा ठीक कर जाते हैं। अच्छा जनाब, और मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं 3636 पर। चाची हमारी बहुत प्यार से हमें सुन रही है। जफर भाई क्या कहने, क्या कहने जफर भाई। जफर भाई आप अपने डीपी पे खातून की तस्वीर लगाई हुई, चक्कर क्या है भाई, बंदा है तो बंदे की तस्वीर होनी चाहिए। अच्छा चाची मेरी क्या कहनी, चाची के मैसेज पढ़ रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज बहुत जबरदस्त, वो मैं जरा शामिल करता हूं। कह रही है वक्त बख्त और ताकत हमेशा तब्दील होते रहते हैं, इनको कभी भी अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए। अच्छी बात की। और एक और मैसेज बहुत अच्छा है इनका, दरवाजा काबे का हो या अदालत का, हमेशा ताकतवरों के लिए खुलता है, गरीब तो सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं। भाई क्या प्यारी रियलिस्टिक बात कर डाली आप, वाह वाह वाह। अच्छा जी संजीदा खुश हो रही है कि चाची के मैसेज आ गए हैं। चलें जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही आज मेरी भी यही फीलिंग। और मेरी क्यूट सी प्यारी सी मिसेस फारूक जो है, इतनी सारी दुआएं जो लिख के दे देती ना, हाय हाय खुश रहे हम। इसके अलावा मुजीब रहमान मरफानी, उन्होंने नाम लिख दिया सिर्फ। और इसके अलावा यार आयाज फलस्तीन, हमास, लबनान, शाम, सुडान के लिए दुआ करना सरकार। इसके लिए तो अब्दुल्ला शाहगाजी जाना पड़ेगा, यहाँ तो नगमे गीत और ये गाने चल रहे हैं। कवालियां चलाऊं या नाते चलाऊं तो फिर शायद को माहौल बन जाए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शाहगाजी ठीक है। अच्छा जी आपके एफएम मंडी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं प्रॉब्लम हमारे उस्मान भाई थे, अब वो आए हैं, उन्होंने ठीक किया और अब बिल्कुल सही हो। वॉइस बंद हो जाती है कभी कभी, ऐसी टेस्टिंग करते रहते, तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं, तो पता चल गया। हाँ भाई अरफानी भाई सुन रहे हैं भाई। हर गलत चीज को भी हम ना जस्टिफाई कर देते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं किसी तरीके से ठीक हो जाए। चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब।

और भाई जनाब सुन रहे हैं FM 100। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कॉल का क्या सिलसिला, कॉल इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। ये बिग स्वीट सी प्यारी सी मीठी सी गोली, लेकिन मैं आज ठीक हो जाएगा यार, पक्की बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह, बहुत जल्द जो है वो यहां से आप जो है वो हमें लाइव कॉल का सिलसिला भी देखेंगे आप। अच्छा जनाब, और इसके अलावा फारसी गाने की फरमाइश कर दी किसने भला, रुबाब जी। रुबाब जी वैसे चले, वैसे तो रिक्वेस्ट शो नहीं है, लेकिन चले लैंग्वेज वाली बात आ जाती है, पश्तो सिंधी पंजाबी, तो वो गाने में शामिल कर लेता हूँ। चले मैं थोड़ी सी देर, जरा मुझे इंतजार, थोड़ा सा इंतजार आप करें, फारसी गाना मैं आपके लिए अच्छा सा भी थोड़ी देर में प्ले करता हूँ। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन कहने नाइस प्लेलिस्ट भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अरे मिसेस फारूक को गाने पसंद आ रहे हैं, वाह वाह वाह क्या बात। यार ये एक ट्रैक मैंने सुना, कमाल शायरी है यार इसकी, जरा थोड़ा सा सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं। और वो है कैसे, जरा चेक करें आप।

0: हफ्ते।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: लाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM।
5: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: FM24/365
7: 247365
8: Active, yummy,
7: adorable,
8: zabardast.
7: Say I've got a crush on you.

वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस आप लोगों के पहुंच रहे हैं के एच आई स्पेस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर कर। अच्छा भाई मुजीब रहमान वरवानी ने क्या नक्शा खींचा यार, कह रहे कराची काश कराची टू इस्लामाबाद सफर हो और सीट लंबी करके हेडफोन लगा के और शो आपका हो यार। वैसे एक बात है मजा आता है इस तरह से आप सुनते भी जाएं, सिग्नल सही आ रहे हो इस्लामाबाद तक हमारी ट्रांसमिशन सही आ रही हो तो फिर चल आप एंजॉय करेंगे मजा भी आएगा, लेकिन इतनी देर कौन बैठेगा यार, ये भी तो सोचो यार 24 घंटे का सफर और अगर रास्ता लंबा हो गया कहीं रुक गए कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान है ना, कहीं पानी आ गया है, कहीं रश लगा हुआ है, कहीं धरने लगे हुए हैं, ये अजीब मसले हैं भाई पाकिस्तान में, ये भी एक अजीब कहानी है। मुसाफरों को रोक लो भाई, रोड बंद कर दो। ये देखो इशारा फैसल भी आपने देखा होगा, बेचारे एयरपोर्ट पे जाने वाले मुसाफिर इतने लाखों रुपए की टिकटें ली हुई थी, वक्त पे पहुंच नहीं पा रहे, वो अपने हिसाब से निकल रहे कि भाई दो घंटे पहले निकल जाएंगे, एक घंटा पहले निकल जाएंगे, लेकिन आगे ये मुसीबत। तो यार जरा मुसाफिरों का भी ख्याल रखना होता है, बिल्कुल एहतजाज पुरअमन मुजाहरे करना आपका हक है, लेकिन एक जगह है वहां पे जाके करें आप, रोड ही रोक दी भाई, चलो भाई जाके दिखाओ आप, ऐसा क्यों भैया। अच्छा भाई नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और वो है कैसे।

0: अच्छा भाई, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त अमेरिका में होते हैं, यूएसए में, और वो वहां से हमारा शो सुनते हैं और इतने प्यार से मोहब्बत से वो जो है वो फोन भी कर लेते हैं, और मैं चाह रहा हूँ उनको जरा शामिल करें। इतनी दूर पाकिस्तान से, और भाई मेरा 30-35 साल से वहां रह रहा है, बीच में कभी कभी 10-15 साल बाद वो तशरीफ लाते हैं, तो मैं इनसे कहूंगा इतने दिन बाद क्यों आते हैं, और इतनी दूर रहने के बाद भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत याद रखते रहते हैं, तो जरा इनसे पूछते हैं। भाई असफर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए क्या चल है?
0: अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, आप बताएं सरकार, इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, कैसा लगता है यार? अच्छा, पाकिस्तान में तो सारे वो सुन रहे होते हैं ना, घर की मुर्गी दार बराबर वाला हिसाब है, दूर से सुनते कैसी फीलिंग होती है? पाकिस्तान याद आ रहा होता है
1: यार, दिल कहता है बस वहाँ पे आ जाए, लोग अपने लोगों में बैठे घूमे फिरे, थोड़ा अपने लोगों से मारे, वो महफिले वो बातें हैं, वो यार एक डिफरेंट चीज है हमारी बात, हमारे कल्चर की एक डिफरेंट चीज है,
0: ये बात
1: जो यहाँ पे नहीं मिलती।
0: अच्छा एक और चीज भी है, दूर के ढोल सुहाने, ये वाली बात कहाँ तक सही है, क्या ये बात सही है?
1: ये सुहाने से लिहाज अब डिपेंड करता है कि इंसान किस सेंस में ले रहा है, अगर इंसान अपने करियर के लिए आया हो तो ये मुल्क अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप अपने डेडिकेशन, वही बात है जितना आप वोट डालेंगे उतना आपको गुण मिलता
0: है। सही बात है, सही बात है, यानी आपके ऊपर है क्या आप उसको किस तरह। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब हम बातें मैं अभी जरा कर रहा था, वो आपने सुनी होगी यकीन, वो धरने की जा रहे थे, मुसाफिरों को रोका हुआ है कि भाई ये वक्त पे ना पहुंच रहे हैं, तो इसके बारे में जरा थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या वहां इसी तरह धरने होते हैं?
1: नहीं ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसी डिस्ट्रप्शन कभी लाइफ की यहाँ पे नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान में आ जाती है ना एकदम। ये धरनों का जो इफेक्ट पड़ता है ना, ये लोग समझ में नहीं आते, लोगों की इफेक्ट लोगों की भी अपनी लाइफ पे पड़ता है, डेली लाइफ पे पड़ता है।
0: सही बात बिल्कुल ऐसा ही है,
1: क्योंकि लोग जो काम पे जा रहा है बेचारा, वो सही टाइम पे काम पे नहीं पहुंच पाता, फिर उसकी भी आगे ताल्लुकात खराब होते हैं, हजार चीजें होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना है वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाता, किसी को अब मुल्क छोड़ के जाना होता है, कोई किसी को फ्लाइट लेनी है, किसी को ट्रेन लेनी है, किसी को ट्रेन पहुंचना है, किसी को ट्रेन पहुंचना है, हजार एम्बुलेंस रोडों पे चल रही है, जिन्हें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वो बेचारे मरीज अंदर पड़े हुए होते हैं, वो नहीं पहुंच पाते।
0: बिल्कुल सही बात,
1: और धरनों में फिर इतना जुल्म होना, लोगों के ऊपर इतना तशद्दुद होना, ये काम क्या, ये अच्छी चीज नहीं है यार, ये हमारा एक बहुत बुरा इम्प्रेशन दे रही है वर्ल्ड वाइड।
0: यही बात
1: आजकल ये जो मीडिया जो इतना वो हो गया, पब्लिक हो गया, ये
0: सही,
1: इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका ये कि आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं राइट अवे, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है माशरे में, क्या हो रहा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये कि लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं।
0: क्या कहने, क्या यार, आपके अंदर एक आरजे छुपा हुआ है, आपके अंदर एक होस्ट छुपा हुआ है, अब आप जब पाकिस्तान खासतौर पर कराची तशरीफ लाएंगे ना, मेरे शो में आपने लाजमी आना है और बैठ के हमने एक साथ शो करना है, डन हो गई बात की नहीं?
1: इंशाल्लाह डन हो गया।
0: अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन आपको सलाम कह रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं सेंडर्स की ये छोटी सी पार्टी हमारी। ठीक हो गया जी, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से, बहुत शुक्रिया। तो भाई जान, इसी के साथ ही जाते जाते कुछ कहना चाहें एफएम 100 के दोस्तों को?
1: यार सब आप सब लोग हमारी दुआओं में शामिल हैं, और हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम जितना कर सकें अपने मुल्क के लिए, मिस भी बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं जो हो सकता है हम सब करें अपने मुल्क के लिए।
0: ठीक है। अच्छा जनाब ये बताओ, अच्छा ये जाते जाते ये बताएं टाइम क्या हो रहा है, दिन का टाइम है, दोपहर का ही होगा यकीन, क्या हो गया
1: यहाँ पे इस वक्त? बजे दोपहर के 12:48
0: यहाँ हमारे मुंह पे बजे में 12, वैसे अरे बारह वैसे इस वजह से। चले जनाब, बड़ी मेहरबानी असफर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ऑन कॉल लिया, और मेरी तरफ से आपके ऑडियंस को और आपके स्टूडियो में जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: चलिए जनाब, बड़ी मेहरबानी
1: आप लोग,
0: बिल्कुल,
1: और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आजकल सुना है हालात बहुत खराब हो गए
0: हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस होगी, हम लोग ऐसे प्रैक्टिस
1: ध्यान रखें।
0: चले जनाब, बड़ी मेहरबानी असफर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद वापस आते हैं, सुनते रहे FM 100 अयाज अहमद के साथ।

आप वेलकम बैक सुन रहे हैं फिल्म 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर। अनीस कह रहे हैं अयाज भाई सिंध पुलिस के तमाम मेरे ख्याल से जवानों को लिखना चाह रहे हैं, जवानों को हमारा सलूट और सलाम। और आसिफ अहमद वतन के जमा और हमारे जानों, बिल्कुल जनाब बिल्कुल, तमाम पुलिस वाले जितने भी हमें सुन रहे हैं उनको सलूट सलाम। लेकिन यार थोड़ा हाथ हौला रखा करो यार आम आदमियों के ऊपर। अच्छा, काफी सारे जो हैं वो अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ उनमें से ना जरा प्राउड हो जाते हैं, बस वो वर्दी पहन ली तो उन्होंने बोला बस भाई हूं अब खैर नहीं किसी की। तो मैं ये कहूंगा कि यार थोड़ा जरा हथौला रखा करें। और खास तौर पे एक चीज मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, पहले भी मैंने जिक्र किया था और आज फिर मुझे याद आ गया, ये जो ट्रैफिक पुलिस में जितने भी पुलिस वाले हजरात हैं यकीनन बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बेचारे मोटरसाइकिल वालों को नहीं छोड़ रही। कोई शक है कोई अगर किसी चीज पे तो आप बिल्कुल रोकें, लेकिन यार गरीब आदमियों के ऊपर इतने चलान आप कर देते हैं और वो भी हैवी हैवी, थोड़ा हाथ हौला रखें। अयाज कल पहले ही तुर्की सॉन्ग लगा, यार तुर्की ढूंढना पड़ेगा सरकार, तुर्की इस्तांबुल भाई मुझे लगता है ताजा इस्तांबुल से आया, और तुर्की ड्रामे वैसे मेरे बड़े फेवरेट हैं, अच्छे लगते मुझे वो। चले मैं कोशिश करूँ, ये आपने एक दिन पहले रिक्वेस्ट की है मुझे भाई, तो मैं वादा नहीं कर रहा लेकिन कोशिश करूंगा। ठीक हो गया, टाइम थोड़ा रह गया है और जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े करके मैं आपको जरा गाने सुनाता हूं।

क्या बात है जनाब। अच्छा वाइटल साइन और जुनून के बाद अगर कोई बैंड हमें अच्छा लगा, वैसे हर की अपनी पसंद होती है। नूरी बैंड, कमाल यार, जबरदस्त बैंड। बहरहाल जनाब, टाइम जरा स्पीड से गुजर रहा है और सॉन्ग इतने सारे रह गए यार। आप लोगों से गपशप करता रहता हूँ, मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ, गाने जो है वो रह जाते हैं।

हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। होटल कैलिफोर्निया ओरिजिनली तो ये गाना ईगल्स बहुत ही जबरदस्त बैंड, लेकिन ये भी बड़ा जबरदस्त रीमिक्स कह लें, रीडू कह लें, रीमेक कह लें, बहुत ही आला। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, ट्रैक पसंद कर लिया आसिफ भाई ने, वाह वाह वाह। और इसके अलावा जनाब गुफरान दी ग्रेट तशरीफ ला चुके हैं भाई स्टूडियो में, प्यारे से हमारे इंजीनियर। अच्छा जनाब, और मिसेस फारूक आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत मुबारक हो, जबरदस्त सिस्टम यहाँ पे है वो जो आ चुका है। ये मैं गुफरान भाई से कह रहा हूँ, खुश हो रहे हैं भाई जनाब। और एक बहुत अच्छी बात जो हमें चाची ने लिखी कि अयाज, किसी को गुलाब देना इश्क नहीं, इंसान को गुलाब की तरह रखना इश्क है भाई। वाह वाह वाह, इसी बात पर चाहेंगे आपसे इजाजत, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामा।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

0: अगली लकी ड्रॉ विनर। सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: FM247365

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

लिए कुछ दिल की, कुछ अपने दिल की, कुछ आपके दिल की, कुछ उनके दिल की। आज के शो का मौजू कोई नहीं होता, मौजू सिर्फ और सिर्फ दिल होता है, मोहब्बत होती है। और इस पर तज़करा किए हुए मेरा ख्याल है काफी अरसा हो गया, क्योंकि गुज़श्ता चंद जुमेरातों से कभी 14 अगस्त आ रही है या कभी मेरी गैर हाजिरी हो रही है, तो कुछ आज बात दिल के हवाले से ही करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो आज के शो में आप अपने पसंदीदा इंतखाब जो हैं वो भेज सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। मैसेजेस करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, जो कि मैं बता चुका हूं, फिर बताता हूं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, कि ये चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। कोशिश कीजिएगा कि आज के शो में आप दिल की बात करें, ना कि सबको फला फला फला फला को सलाम, आज ये कहां है, आज वो कहां है। आज याद कीजिए, लेकिन सिर्फ उनको याद कीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, मैसेज में ये जरूर लिखिए कि तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हमारा प्यार भरा सलाम। और किसी एक शख्सियत को आप अगर कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी जरूर कर सकते हैं उनका नाम लेकर। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बस नाम के हवाले से है। और बातें जो हैं वो दिल की करनी है सिर्फ, उसने ये किया था, उसने वो किया था, ये तमाम बातें जो हैं ये आज के शो में नहीं होंगी। आज के शो में तो सिर्फ दिल की बातें होंगी। बड़ी प्यारी प्यारी सी गजलें हैं और फरमाइशी प्रोग्राम आज बिल्कुल नहीं है, डेडिकेशन हो सकती है कि जी आपने वो गजल चलानी है, वो गजल चलानी है। तो गजलें जितने भी सुनेंगे आप वो हमारी पसंद की सुनेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो आपको वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के लिए आपको एक चंद अशार सुनाते हैं, और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी गजल है, और उसके अशार जरूर आप गौर तलब हैं। हमारी प्यारी जी बहन नौरीन तौसीफ नजर आ रही हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, सवा गुल के भी आ रहे हैं, मतलब आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं भरपूर तरीके से, तो उनकी जानिब हम जाएंगे। आप से गुजारिश है कि गजल जब सुने तो उसकी शायरी पर जरूर गौर कीजिएगा। और वार्म अप करने के लिए अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना, लोग पूछेंगे क्यों परेशान हो तुम, लोग पूछेंगे क्यों परेशान हो तुम, कुछ निगाहों से कहना, जुबान पे ताले रखना, न खोने देना मेरे बीते लम्हों को, न खोने देना मेरे बीते लम्हों को, मेरी यादों को बड़े प्यार से संभाले रखना, तुम लौट आओगे इतना यकीन है मुझको, तुम लौट आओगे इतना यकीन है मुझको, मेरे लिए कुछ वक्त निकाले रखना, दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, मेरे लिए अपने अंदाज वही पुराने रखना।

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनो। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुश आमदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और आज 3 बजे तक सजाएंगे महफिल शेर व शायरी की, कुछ सुनेंगे खूबसूरत सी गजलें, कुछ मेलो गीत, बात कर

वेलकम बैक जनाब। अगर मैं कह दूं कि तुम हो मेरी तो मैं तुम्हारा, अगर मैं कह दूं कि तुम हो मेरे, एक लफ्ज से देखें शेर कितना बदल जाता है एक जुमले से। खैर जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये गजल पसंद आई होगी। मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का। हैं जी, और सबसे पहले जो मैसेज आया है मुझे, वो मेरी प्यारी सी बहना सबा गुल का है। सलाम कह रही हैं और कह रही हैं कैसे हैं आप तमाम सुनने वालों को और लाला को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, एक ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा अच्छा सा लाला को। बिल्कुल कर देंगे जनाब। हमारे यूसुफ भाई पापूच से आ गए हैं और तमाम ही सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, FM 100 की तमाम फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी का नाम जरूर लूंगा और चाची का जरूर लूंगा और बाकी नहीं लूंगा। अच्छा, मुजीबुर रहमान मरफानी साहब का जौहर से फिर मैसेज आ गया है और उन्होंने अरबिक सॉन्ग की डेडिकेशन के लिए कहा है। उनके तमाम बच्चे सबके उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। तो मुजीब साहब, आपने कल भी शो में फरमाइश की, कल का शो भी मुख्तलिफ था, नए गाने चल रहे थे और आज का शो भी मुख्तलिफ, और कल मैं आपको बता भी चुका हूं, तो आपकी ये फरमाइशें जो हैं, हम आपकी दोनों फरमाइशें कल के शो में जरूर पूरी करेंगे। आपका चाहे मैसेज आए या ना आए, ये हमारा आपसे वादा है। और नदीम भाई, आवाज सही आ रही थी आपकी, एकदम बंद हो गई, सबागुल कह रही हैं। चलें फिर आ जाएगी, कोई मसला थोड़ी है।

अच्छा जनाब, मुजीबुर रहमान साहब का मैसेज हो चुका, क्योंकि सभा का मैसेज पढ़ने के बाद कुछ जब आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे थे तो मैंने फौरन से पेशतर हमारे प्यारे से गुफरान भाई को ये खबर पहुंचाई कि भाई आवाज अचानक कहीं बंद हुई है, तो जरा चेक कीजिए। तो वो चेक करने के लिए जो मैं उनको इशारे कर रहा था, इस वजह से आपको तसलसल थोड़ा सा टूटा। तो जनाब, आपके और मैसेजेस की जानिब जाएंगे। हमारे अयूब आफरीदी आ गए हैं और कह रहे हैं, जाने जिगर या हबीबी, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह उन्होंने जो नाम लिखते हैं वो नाम सारे हैं जिनको उन्होंने सलाम कहा है, प्यार कहा है। सबा गुल है उनमें, मुश्क है, हिना है, महानूर है, प्यार भरा सलाम कहा है। तो लाला, आपसे तवक्को यही है कि आज के शो में दिल की बात करेंगे और उसके साथ साथ ये आपका भी फेवरेट शो है तो कुछ आशार हो जाएं तो क्या बात है।

0: है।
1: अच्छा जनाब, अब बढ़ते हैं आपके और मैसेजेस की जानेब। संजू आ गई हैं, लेकिन आज के शो में हम इनको सिर्फ और सिर्फ रूहे मन के नाम से पुकारेंगे, संजू के नाम से नहीं पुकारेंगे, सिर्फ आज के शो में। वैसे हम ये नाम दोनों जो हैं इनके, वो हर शो में लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। और नदीम भाई आ गई आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया सबकुल। और संजू कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुनो ऐ रूहे मन, दिल से शायरी की बैठक में दिल की खुशगवार धड़कनों की धक धक से खुशामदीद कहती हूँ। रब्बे ताला सलामती और आफियत की अनगिनत दुआओं के साए में रखे, नजर बद से महफूज रहे, इलाही आमीन। जब इख्तिताम लिखती हूँ तो दिल से दुआ करती हूँ के रब से के सांसों की रवानी को बहाल रखना, साथ रहने का वादा है, वादे की वफा निभानी है। इस साथ को हमेशा बदगुमानी हसद बद नजर से महफूज रखना, इलाही आमीन। शाद रहें। 3 हफ्ते बाद मेरा पसंदीदा प्रोग्राम हो रहा है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, 3 हफ्ते के बाद हो रहा है। और कहती हैं कि नदीम, शायरी सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि जज्बात, एहसासात और जिंदगी के तजर्बात का आईना होती है। हर शायर अपनी मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत, दर्द, उम्मीद, जुदाई, ख्वाब और हकीकत को बयान करता है। हमारे पसंदीदा शेर किसी और के दिल को भी छू जाए, इसीलिए लफ्जों और शायरी के सफर का हर जुमेरात 1 से 3 बजे बज़्म शायरी मेजबान नदीम अख्तर का बहुत बेताबी से इंतजार रहता है। आपकी सहरंगेज आवाज रात के इस पहर में जादू सा जगा देती हैं, मीठी सी कसक को कैफियत में बदलने का हुनर रखती हैं। सुनो हे मन, ये मेरे दिल की सदा जो आपकी समाज तक पहुंचाई है। ये आप लोगों की हुस्न समात है और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत जुमलों से जो आपने नवाजा है, अल्फाज जो है वो नहीं मिल रहे कि क्या कहूं। बस यही कहूंगा कि हुस्न समात है आपकी। मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल रहूं आप लोगों के सामने, बनावट ना हो। जब ये प्रोग्राम करता हूं तो बस उसी कैफियत में मुब्तला हो जाता हूं, और शायद इसी वजह से जो पढ़ता हूं या जो कहता हूं वो लोगों के दिलों में वो आवाज पहुंचती है। और कोशिश यही होती है कि जो दिल है, दिल की बात करूं। और दिल की बात कुछ ऐसी होती है रूहे मन के, वो क्योंकि दिल तो हर एक के दिल में धड़कता है, हर एक के सीने में धड़कता है दिल तो, और दिल की कैफियत हर एक की एक तरह की होती है। ये जो धड़कन है, ये जो धक धक है, चाहे इंसान का मिजाज कैसा भी हो, लेकिन ये धक धक एक जैसी होती है हर इंसान की। चाहे वो उस दिल में मोहब्बत है नहीं है, तो लिहाजा एक चीज तो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है, मिलती है, और वो है दिल की धक धक। तो बस उस दस्तक को, ये जो धक धक की दस्तक है, कोशिश ये होती है कि ऐसी बात करूं, उस धक धक वाली बात करूं कि हर एक के दिल का दरवाजा जो है वो खुल जाए। और खुलने के बाद कोशिश साथ में ये भी करता हूं कि उसमें मुस्कुराहटें बखेरूं, दिल में जो दर्द है उसको उनके दिल से निकाल दूं। और जहां तक शायरी का ताल्लुक है, ये इसी हवाले से आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में जो बात की है कि मोहब्बत, दर्द, उम्मीद, जुदाई, ख्वाब, हकीकत, ये तमाम चीजें जो है हर एक के दिल से मुंसलिक होती हैं। लिहाजा एक शेर हम पढ़ते हैं और वो शेर ऐसा लगता है कि वो हमारा अपना शेर है, ये हमारे ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारी जिंदगी से मुतालिक है, ये मेरी मोहब्बत के मुताबिक है, ये मेरी मोहब्बत के लिए ही है ये शेर, ऐसा लगता है, अपना अपना सा लगता है। तो बस जो चीज अपनी लगती है वो होती ही अच्छी है। और जिंदगी में ये मोहब्बत भी तो ऐसी ही है जिससे इंसान मोहब्बत करता है वो अपना अपना सा लगता है। क्यों, सही कहा या गलत? तो जनाब आगे बढ़ते हैं, इनके इंतखाब भी आए हैं, वो इंतखाब गाहे बगाहे शो में एक एक करके हम शामिल करते रहेंगे। और आ गई आवाज, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा उन्होंने, ये संजू ने भी कहा, रूहे मन ने, और उसके साथ हैं हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफबी एरिया कराची से, कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, आपकी खिदमत अकदस में अपनी डायरी से मुंतखब गजल पेश खिदमत है, और इनके पसंदीदा शायर का नाम तो अब मुझे भी याद हो गया है कि मोहीउद्दीन हमदम साहब के अशार इन्होंने भेजे हैं, और कहते हैं मेरी यादें भूलने वाले दिल किससे बहलाओगे, मेरी यादें भूलने वाले दिल किससे बहलाओगे, आईना गर्द धुंधलाया तो चेहरा देख ना पाओगे, आईना गर्द धुंधलाया तो चेहरा ना देख पाओगे, अश्क तुम्हारी आंखों में और जब्त की तलकीन मुझे, वाह, अश्क तुम्हारी आंखों में और जब्त की तलकीन मुझे, मुझको समझाने वाले खुद को क्या समझाओगे, धोखा खुद को देने वाले अश्क छुपाकर हंसने वाले, याद में मेरी याद मेरी आएगी तुम्हें जब कैसे अश्क छुपाओगे, बाजी इश्क नहीं आसान हो जाता है जी का जया, हारिए अपनी रोने वाले जीत पे भी पछताओगे। और हमदम का दिल तोड़ गए तुम, तन्हा उसको छोड़ गए तुम, राह में गर मिल जाए कहीं वो नजरें कैसे चुराओगे। तमाम रेडियो के सामाईन और खास तौर पर मेरे वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में उन्होंने अकीदत भरा सलाम पेश किया है। हर लम्हा दुआगो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफबी एरिया कराची से। और हमारी शहजादी बहना भी आ गई हैं, जरीन नूर, और कहती हैं कि सलाम, कैसे हैं वालिद साहब को, संजू को, और तमाम चाची को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। और संजू को अच्छा सा ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब आपकी जानिब से। और हमारी प्यारी सी एक और शहजादी बहना जो कि फैसलाबाद से हमें सुनती हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज शरीफ हैं? बहुत अच्छे शरीफ हैं, वाकई में मिजाज शरीफ है मेरे। स्लीपलेस नाइट में भी आपको खुश आमदीद कहती हूं, और तमाम हसीन तरीन समातों को मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं, मेरी रूहे जहां को दुआ सलाम और दिल से ढेरों दुआएं, और जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। क्यों नहीं भाई, मैं ठीक कह रही हूं, यही तो है, यही तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। और मोहब्बत में भी यही होता है ना, कि मोहब्बत पर भी भरोसा इंसान कर लेता है, देखकर भरोसा कर लेता है, कैसी बात है, ठीक है ना। रूहे जान को खूबसूरत सी मेरी पसंदीदा गजल जरूर डेडिकेट कीजिएगा। आपको पता है वो कौन सी गजल है? वैसे तो बहुत सारी गजलें, लेकिन जो भी आपकी पसंदीदा गजल है मेरे जहन में फौरन आ जाएगी, देखेंगे क्यू शीट में हुई तो। वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी गजलें हैं, और उम्मीद करता हूं कि पहली गजल भी आपको पसंद आई होगी। और कहती है कि मोहब्बत तीन तरह की होती है। हाय क्या बात की है भाई, मोहब्बत तीन तरह की होती है। पहली, किसी इंसान को आप मिले और कबूल कर लिया, उसको कहते हैं नसीब। किसी इंसान को आप मिले और कबूल कर लिया, इसको कहते हैं नसीब। और दूसरी वो कि आपने किसी इंसान को चाहा और वो आपको मिल गया, इसको कहते हैं मुकद्दर, वाह। और तीसरी, आपने किसी ऐसे इंसान को चाहा जो सारी जिंदगी आपको हासिल नहीं हुआ, इसको कहते हैं इश्क, वाह। और एक शेर है कि मिला जो मुफ्त में उसको नसीब कहते हैं, जो मांग कर मिला उसको मुकद्दर कहते हैं, मगर जो मिल ना सके फिर भी दिल में जिंदा रहे, खुदा गवाह है इसी को तो इश्क कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। शेर बहुत पसंद आया हमने, बाद हमने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन ऐसे ही आज एक ख्याल आया कि इंसान पैदा होता है, बचपन आता है, फिर लड़कपन आता है, और लड़कपन में जो है वो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसको मोहब्बत हो जाती है, और फिर इस तरह जिंदगी का सफर आगे बढ़ता बढ़ता और ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है कि बचपन वापस आ जाता है, यानी कि बुजुर्गी आ जाती है, और बुजुर्गी में भी दिल वही होता है और वैसे ही थक थक करता है। तो मेरे जहन में यह आया कि मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती, इंसान बूढ़ा हो जाता है, मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती, मोहब्बत हमेशा जवान रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान ने पहली नजर में किसी को देखा हो। वो नजर जो है वो चेहरे की झाइयों में से भी नजर आ रही होती है। तो बस यही ऐसे ही मेरे जहन में आया कि मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती, मोहब्बत हमेशा जवान रहती है, चाहे बालों में सफेदी आ जाए लेकिन मोहब्बत जवान रहती है, वो बूढ़ी नहीं होती। क्या कहेंगे इस बारे में, मुझे ये ख्याल आया तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के समातों की नजर कर दिया, कहीं पढ़ा नहीं है ये। अच्छा जनाब, अभी आपको एक और गजल की जानिब लेकर चलते हैं, और ये गजल जो है हम सबा गुल की जानिब से अयूब आफरीदी साहब को डेडिकेट करते हैं।

वेलकम बैक है वो जो हमने तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, क्या बात है आदा परवीन जी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये गजल पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आपकी मैसेजेस की जानेब और हमारे प्यारे से इस्लामाबाद से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गुल तेरा रंग चुरा लाए हैं गुलजारों से हमीद गुल साहब आ चुके हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा। एक शेर और एक नज्म पेश खिदमत है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। शेर है कुछ जुल्फे उर्दू सवारने वालों, कुछ बताओ कि जिंदगी क्या है। हाय हाय भाई भाई, क्या बात है, क्या बात है। जुल्फे उर्दू सवारने वालों, कुछ बताओ कि जिंदगी क्या है। और आगे खुद ही नज्म में बताते हैं ये क्या बात है। नज्म है का उन्वान है जनाब इनका, हवा हम राज है मेरी, मौके वारदात पर मुझको एक गुमशुदा ख्वाब मिला है, एक गुलाब मिला है। ऐसा लगता है कोई जल्दी में उसे छोड़ गया या फिर रख के कहीं शायद भूल गया। ये निशानी मुझको कातिल तलक ले जाएगी, गौर तलब है ये निशानी मुझको कातिल तलक ले जाएगी, हवा हमराज है मेरी, ये बताएगी मुझको उस पता, उसका पता मैं ढूंढ निकालूंगा। वो काली आंखें वो सुर्ख डोरे, बस एक बार मुझको उसकी उंगलियों के निशान मिल जाएं, नाकाम हसरतों को जुबान मिल जाए। हवा हमराज है मेरी। गुल साहब क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और इनका एक और मुझे शेर जो है वो याद है, मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यो लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। बहुत खूब था यार, गौर तलब है ये, बहुत गौर तलब है भाई, हर एक के ऊपर फिट बैठता है। मंजिल की जुस्तजू में कहां आ गया हूं मैं, यूं लग रहा है राह से भटका हुआ हूं मैं। थैंक यू गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है आपकी। जहीनूर मेरी बहन कह रही है ये लफ्जों की शरारत है, कुछ भी सोचकर लिखना तुम, मोहब्बत लफ्ज है लेकिन ये अक्सर हो भी जाती है।

है जरी नूर मेरी बहना, क्या बात है, जबरदस्त। इस तरह से होता है इस तरह के कामों में, मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती। ये हमीद गुल साहब, आपको दे रहा हूं जुमला, मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती। इस पर मैंने शुरू में चर्चा की थी थोड़ी सी कि मोहब्बत बूढ़ी क्यों नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आप शायर हैं माशाल्लाह से, और आप जरूर कुछ ना कुछ इस हवाले से बताएंगे, बल्कि रूहे मन से भी कहेंगे, और अयूब आफरीदी साहब से भी कहेंगे, वो भी बड़ा अच्छा जौक रखते हैं। अच्छा भाई, हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का मैसेज आया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है मुंतखब गजल को शामिल करने। आए बड़ी प्यारी दुआ दी है, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जिंदगी भर हसद करने वालों के शर से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और आज के प्रोग्राम में जो गजलें पेश की जा रही हैं, इंतखाब लाजवाब है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारी तारीफें लिखी हैं इन्होंने, लव यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम सैफ आ गए हैं, हो सिर्फ इतना लिखा है इन्होंने, न सलाम न दुआ। कासिम भाई, आपका गाना कल चलाएंगे हम, और वो आ चुका है स्टूडियो में। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। एने भाई, शो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है आज के शो, और लाला ने जो अशार भेजे हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, ये कह रही है हिना गुल, और उसके साथ सलाम भी गाया उन्होंने, और मेरा हाल अहवाल भी पूछा है। मेरा प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम सबको। और लाला कहते हैं कि आज के शो में दिल के सारे तार छेड़े जाते हैं। बिल्कुल जनाब, वाकई में छेड़े जाते हैं। इस तरह तो होता है ना जनाब, इस तरह के कामों में क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में। संजू का एक और इंतखाब जो है वो हम शामिल करेंगे, ये इनका दूसरा इंतखाब है, और आपको अच्छा लगता हो तो जरूर बताया करें कि भाई इनका इंतखाब अच्छा था, गुल साहब का इंतखाब अच्छा था, लाला का इंतखाब की तो तारीफ आ गई है, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा जनाब, इनका रूहेमन का जो दूसरा इंतखाब जो है वो हम शामिल ये शुरू करते हैं, और कहती हैं कि सुनो रूहेमन, रूहों का खास ताल्लुक होता है, एक रूह दूसरी रूह को महसूस करती है। ये मुमकिन नहीं कि आप किसी के लिए तड़प रहे हों और वो बेखबर रहे। रूहों का ताल्लुक लफ्जों का मोहताज नहीं होता, वो खामोशी में बोलता है, दूरी में भी धड़कता है, और फासले के बावजूद दिल तक उतर जाता है। अगर आपकी आंखें किसी नाम पर नम हो जाती हैं, अगर दिल किसी एक ख्याल पर रुक सा जाता है, अगर रातें किसी एक एहसास के गिर्द घूमती हैं, तो यकीन रखें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लम्हे वो रूह भी चौंक जाती है, क्योंकि सच्ची चाहत पुकार कर नहीं महसूस होकर पहचानी जाती है। ऐ मेरे रूहे मन, मेरी दिल रुबा जिंदगी के रंग भरने वाले, ऐसा साथ जगाने वाली मेरी रूहे मन। क्या बात है भाई, आज तो सभी छाए हुए हैं, वाह वाह। अच्छा, इसमें जो कहा गया है ना, ये एक इल्हाम का भी किसी ना किसी तरीके से जिक्र है, दिल से दिल तक पहुंचने वाली जो आवाज है वो सिग्नल है जो दिखाई नहीं देते, उसका जिक्र है इसमें। और क्या जिक्र है भाई, बहुत खूब। और अब जो है वो नाराज ना हो जाए भाई हमारी मुश्क, और उसने भी एक उन्वान भेजा था मुझे, वो उन्वान मैंने पढ़ा भी था, सिलसिले मोहब्बत के, क्या कहती हैं इस हवाले से।
نہ تمام رہتے تھے سلسلے محبت کے، اس نے سوچ رکھے تھے فائدے محبت کے، عہد لے رہا تھا وہ مجھ سے دنیا داری کا، اور دے رہا تھا بس واسطے محبت کے۔ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی۔ دائمی نہیں ہوتی لذت لب و عارض، عارضی نہیں ہوتے عارض محبت کے۔ واہ واہ واہ۔ اور کاربائے الفت کو چھوڑ کر ادھورے ہم، لکھنے بیٹھ جاتے ہیں مرثیے محبت کے۔ خاموشی سے بس اپنا راستہ بدل لیں گے، تو بھی آ گیا جس دن سامنے محبت کے۔ کون دل کی ویرانی دیکھ کے یہ سمجھے گا، اس جگہ بھی ٹھہرے تھے قافلے محبت کے۔ واہ واہ واہ بھائی۔ یہ انتخاب ہے، شاعر ہیں اس کے سید مبارک شاہ صاحب۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب مشق۔ اوکے ٹھیک، آج کے شو میں تمہاری شرکت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، بڑی زبردست رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو مطلب ہے صرف تم سے، ہمارے دل میں تو ہمیں تو مطلب ہے صرف تم سے، ہمارے دل میں تو ہی تو ہے۔ تم سے محبت، تم سے شکایت، تم سے محبت، تو تم سے شکایت، اور کسی سے گلا نہیں۔ زندگی کتنی خوبصورت، انہیں بھی یہ پتا نہیں ہے۔ واہ بھائی۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ تم میری دنیا ہو، اور پھر مجھے بتاتا ہے کہ میں دنیا سے تنگ ہوں۔ بدتمیز، آ گئی نا اپنی جگہ پر۔ ویسے ہے خوب ویسے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ تم سے محبت، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ تم میری دنیا ہو، اور پھر مجھے بتاتا ہے کہ میں دنیا سے تنگ ہوں۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ۔ اور جناب میسجز تو آپ کے آ ہی رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو ایک اور بہت خوبصورت سے غزل کی جانب لے کر جائیں۔ اور یہ غزل ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جناب سنجو کو زرین نور کی جانب سے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو پسند آئے گی۔

वेलकम बैक है ये सुनियो और उम्मीद करते हैं आपको गजल पसंद आई होगी। मैसेजेस कर सकते हैं आप के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। अच्छा जनाब गुल साहब कहते हैं कि नवाजदेश सलामत रहे हमेशा और कहते हैं दाग देलवी के हम असर शायर थे अमीर मिनाई एक दिन अमीर मिनाई ने दाग देलवी से कहा कि हम दोनों शायर हैं लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारी मकबूलियत बहुत है और मेरी कम, ऐसा क्यों? तो दाग देलवी साहब ने कहा कि गजल बीवी को देखकर कहोगे तो मियां कामयाब नहीं होगे लेकिन महबूबा को देखकर लिखोगे तो छा जाओगे। क्या बात है भाई, आपने ठीक कहा, मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती लेकिन ये तहरीर काबिले गौर है। बिल्कुल जनाब, बस गुल साहब कुछ दिल में ऐसी बात आई और जिक्र किया कि दिल की धक धक के हवाले से भी प्रोग्राम के आगाज में बात की थी और हर एक का दिल चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो हर एक का दिल थक थक करता है और ये दस्तक दे रहा होता है कि खुल जा सिम सिम, लेकिन इस दिल में जो मोहब्बत होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। आप अपने महबूब को जब देखते हैं तो वो आपको हमेशा वैसा ही तरोताजा खूबसूरत जवान लगता है क्योंकि आपके दिल में उसकी जो मोहब्बत है वो बूढ़ी नहीं होती। चाहे उसके चेहरे पर जो है झुरलियां आ जाएं, क्या कहते हैं उसको, स्किन जो है वो बूढ़ों की जैसी होती है वैसी हो जाए, लेकिन आपको वो वैसी ही जवान मोहब्बत उससे होती है। और मोहब्बत किसी भी उम्र में हो जाती है, ऐसा है कि नहीं है? जैसे कि दाग साहब ने कहा, दाग देलवी साहब ने, और कहते हैं अपनी सांसें बहाल करते हुए थक गया हूं, अपनी सांसें बहाल करते हुए थक गया हूं, सवाल करते हुए उम्र गुजरी है, दश्त व सहरा में रक्स करते धमाल करते हुए। वाह वाह गुल साहब क्या बात है, आज आप भी छा रहे हैं फुल टाइम मूड में लग रहे हैं आप। और संजू ने भी अभी मैसेज किया है और खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, इसकी शायरा जो हैं वो शबीना अदीब साहिबा हैं और संजू ने ये बताया जनाब बहुत खूब। और हमारे हमीद गुल साहब ने भी बताया शेर, आप तो खैर शायर हैं आपको तो मालूम ही होगा। और वैसे जो है अच्छा चलें गुल साहब अभी एक और आपको गजल नुमा गीत सुनाऊंगा तो उसके शायर बताइएगा कौन होंगे और जाहिर है वो मैं मुझे पूरा यकीन है कि आप पहचान जाएंगे उसके अशार सुनने के बाद। तो खैर जी गुल साहब को जो है मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती इस हवाले से कहा और हमारे प्यारे से अयूब आफरीदी साहब आ गए हैं

अच्छा जनाब, आपको गजल की जानिब लेकर चल रहे हैं और डेडिकेशन जो है वो दो है। और पहली डेडिकेशन जनाब हमारी प्यारी सी बहन अदीला की जानिब से करेंगे हम। सॉरी, दूसरी डेडिकेशन अदीला की जानिब से होगी और पहली डेडिकेशन जो है वो हमारे अयूब आफरीदी भाई की जानिब से होगी। और उनकी जानिब से भाई चार नाम थे, वो नाम भी हम पुकारेंगे। एक नाम तो था जी सबागुल का, और दूसरा नाम जो था वो था हिनागुल का, तीसरा नाम था मानूर का, चौथा नाम था मोश का। और कहा कि इन चारों को ट्रैक डेडिकेट कीजिएगा क्योंकि जीबीएन बहुत खुश होंगी। तो जनाब आपकी जानिब से एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक इनको डेडिकेट हो रहा है, और उसके बाद जो है वो अदीला की जानिब से हम डेडिकेट करेंगे संजू को ट्रैक। तो पहला ट्रैक आपकी समातों की नजर अयूब आफरीदी की जानिब से

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो, तू मुझे इस कदर करीब लगता है। उम्मीद करते हैं कि ये गजल भी आपको अच्छी लगी होगी, और लाला आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, पहली वाली। और जनाब कहते हैं कि अयूब आफरीदी के जिगर संजू की संजू के इंतखाब बहुत अच्छे होते हैं, रोमानवी अंदाज होता है, गुल सबा की इंतखाब बहुत अच्छा होता है हमेशा की तरह, और मुश्क के इंतखाब की तो क्या ही बात है। और हिना गुल कहती हैं लगने दो महफिल आज शायर बन, लगने दो महफिल आज शायरी बयान करते हैं, तुम गालिब की किताब उठाओ हम हाले दिल बयान करते हैं। हाय हाय हिना गुल, वाह भाई वाह, जबरदस्त। और नौरीन मेहना की जानिब से कुछ इंतखाब आया है, उसको भी शामिल करेंगे, पहले मैसेजेस शामिल कर लें। और अब जनाब आपके इंतखाब की जानिब ही आते हैं, और शुरू करते हैं गुल साहब से। कहते हैं घुटनों में दर्द होने के बावजूद मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती, बल्कि देखकर महबूब को मिलने को दिल चाहता है, चाहे पैदल जाना पड़े। क्या बात है, क्या बात है। और जनाब नौरीन मेहना, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो अंदाजा लगाया दुरुस्त लगाया। और कहती हैं कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गईं 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूं मगर मानती नहीं, दिल कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगी तेरी देख भाल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, उनकी हुई हूं मैं मगर उसके सवाल में। बहुत खूब। अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं संजू के इंतखाब की जानिब, और

वेलकम बैक, क्योंकि तुम ही हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त सा गजलनुमा गीत है, मगर है पंजाबी में, और शायद हमारे बहुत सारे सामाइन जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती उनको मजा ना आए, लेकिन जो पंजाबी को समझते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी धुन, इसकी मेलोडी मुझे बहुत पसंद आई, और क्योंकि मैं पंजाबी समझ भी जाता हूं, सो दैट्स व्हाई ये भी अच्छी लगी। उफरान भाई, हम क्या मर गए थे? तो ये आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं, पूरा नहीं चलाऊंगा, थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। और

अच्छा जनाब, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और गुल साहब कहते हैं कि नईम भाई, मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती क्योंकि मोहब्बत अंधी, गूंगी और बहरी होती है। ये सिवाय महबूब के कुछ देखना, बोलना, सुनना नहीं चाहती, क्या ख्याल है। इनका एक शेर आया है, वो मैंने जरूर शामिल करना है। मेरा ख्याल जो भी है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप साथ रहिएगा। और तू अगर सलीके से तोड़ता मुझको, मेरे टुकड़े भी तेरे नाम काम आते। वाह वाह वाह वाह वाह, सबा गुल, इतना अच्छा शेर कहां से भेज दिया भाई? वाह भाई वाह। तू अगर सलीके से तोड़ता मुझको, मेरे टुकड़े भी तेरे काम आते। वाह। और हिना कहती हैं कि कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर ना सोए, कभी हंस के गम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए। वाह वाह, मेरी दास्तान हसरत वो सोना सोना है, वो सोना सोना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। ओए होए भाई वाह भाई वाह, प्रोग्राम का असर हो रहा है। और जनाब, अभी हम फौरन से पेशतर आपको एक जबरदस्त किस्म के गजल की जानिब भेज रहे हैं, और आपने बताना है हमीद गुल साहब की ये किसकी लिखी हुई है।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। फैज अहमद फैज, आपने बिल्कुल सही फरमाया जनाब। हमारे प्यारे से अय्यूब आफरीदी भाई हैं और कह रहे हैं, जिगर आपने आज तो कमाल कर दिया, बहुत बेहतरीन अंदाज, खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ा, बहुत मजा आया, सलामत रहे हमेशा। और टाइम का वाकई में पता नहीं चला। और जनाब, और जनाब, हमने आखिर में एक बड़ा जबरदस्त सा इंतखाब पढ़ना है। और नौरीन बहना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कौन कौन है, गुल साहब ने बिल्कुल सही बताया, फैज साहब का नाम बताया। अच्छा गुल साहब, आपसे एक सवाल पूछना है, सवाल नहीं पूछना, आपसे कुछ कहना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आखिर तक साथ रहिएगा। और आखिर में जनाब, हमने एक इंतखाब शामिल करना है रूहेवन का, और उसके बाद हमारे प्यारे से फर्स्ट टाइम जिन्होंने सुना, फयाज अहमद साहब, उनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और गुल साहब, आपसे ये पूछना था कि ये जो मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती, इसमें थोड़ी सी कैफियत जो मेरे जहन में आ रही है, वो मैं आपकी समाअत तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह से शायर हैं, तो आप इस इनको जो है लफ्जों में बहुत खूबसूरत तरीके से पिरो सकते हैं कि इंसान को जब मोहब्बत होती है, वो किसी भी उम्र में हो जाए तो वो हमेशा जवान रहती है, दिल वैसे ही मचलता है, हर चीज वैसे ही हसीन लगती है। जैसे जब इंसान मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो गर्मी जो है वो भी अच्छी लग रही होती है, हर मौसम बड़ा खूबसूरत और हसीन लग रहा होता है। तो ये कैफियत जो है, उसके हवाले से जो है, जब इंसान एक उम्र को पहुंच जाता है और महबूब भी सामने अगर इस तरह हो, तो वो कैफियत जो इंसान के अंदर होती है ना, उसका इजहार आप लफ्जों के जरिए कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इंतखाब के बाद खुदा हाफिज होगा और हमारे फयाज साहब की फरमाइश पूरी होगी, तो लिहाजा पहले से ही आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और इंतखाब कुछ यूं है, सुनो नर्म लहजा राज़े मोहब्बत, ऐ दिल की दुआ, तुम्हें शायद कभी इस बात का पूरा अंदाजा ना हो सके कि मैंने अपनी अना, अपनी जिद, अपने बेशुमार रसूल, बल्कि अपने मिजाज की कई ऐसी परतें भी सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोशी से बदल दी हैं, जिन्हें जमाना कभी बदल ना सका। दुनिया के लिए मैं आज भी वही सख्त मिजाज, कमगो और अपने फैसलों पर कायम रहने वाला इंसान हूं, मगर तुम्हारे सामने न जाने ये सख्ती कहां तहलील हो जाती है। तुम्हारी एक बात, एक निगाह या एक खामोश मुस्कुराहट मेरी बरसों की जिद को लम्हों में बेमायने कर देती है। तब समझ आता है कि मोहब्बत इख्तियार छीनती नहीं, बल्कि इंसान को अपनी खुशी से अपना सब कुछ सौंप देना सिखा देती है। मेरी तसव्वुर जाना, मेरी रूह मन, मेरी रूह की नकचुरी जिद्दी, मेरी रूह मन, सुनो समझो, मेरी रूह से तुम्हारी रूह तक का ये सफर, रूहें कभी जुदा नहीं होती, एक दूसरे में जज्ब होके अमर हो जाती हैं। मेरी रूह मन, मेरी जिंदगी की हलचल, मेरी दिलरुबा, मेरी पसंद, मेरा इश्क़।

देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।